0: ओए डोलू, तेनू पता मिस्टर बेस्ट एआई दी कैसेट आ रही है? पूरे पंजाब तो वध गीत ने ओए ओए सच्ची कह बेबे, मिस्टर बेस्ट एआई दा गाना कदों आना?
1: बेबा से आ गया,
0: ले सुन ले।